0: Dear listeners, Sai Ram. Welcome to a new episode of the Thursday Live segment, Love to Love. This segment is hosted by Chandu Vijay every Thursday at 2 PM Indian Standard Time. Today's episode was first played live on 17th September 2015.
1: From the studios of Radio Sai at Prashanthi Nilayam, I am Chandu Vijay and this is Love to Love. And on this auspicious day, we have a very special musical session with Sri Anwar Khan and Party from Rajasthan, who performed here in the Divine Presence in Sai Kulwant Hall on the 8th of September. In conversation with Sri Anwar Khan and his group is Radio Sai's Karuna Munshi. I am very grateful to Sister Karuna for recording this interview for Love to Love. So without taking much of your time, over to Sister Karuna.
2: Sai Ram, dear listeners, our studio has come alive with rhythm and music and color because we have a very special group of musicians sitting with us right now who we will be talking to shortly. By way of introduction, I'd like to let you know that yesterday, that is on September the 8th, 2015, was the second day of Parthi Yatra for the devotees of Baba from the state of Rajasthan. And on this day, the folk artists from the colorful state of Rajasthan presented a musical concert entitled Padharo Mare Des, meaning, O Lord, come to our land. A group of artists belonging to the Manganiar community from the Barmer district of West Rajasthan, which is located very close to the Pakistan border, mesmerized the assembly of audience at the Sai Kulwant Hall with the scintillating performance of Rajasthani folk music. And thousands more around the world were glued to this concert through the medium of Radio Sai as they enjoyed it live. The group commenced with the Ganesh Vandana and they went on to praise Lord Krishna, Rama, Shiva, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. And apart from using dholak, harmonium, sarangi, the troupe also played on the century-old instrument of kamachya and khattal. The last song of the concert was Padharo Mare Des. It literally fascinated the audience. And today we are so happy to have this group led by Sri Anwar Khan, who is the recipient of many prestigious international awards. So without any further ado, I'd like to welcome them. Sri Anwar Khan ji, Sai Ram, aur aapko aur aapke saathiyon ka bahut bahut swagat hai Radio Sai mein.
3: Ji, jai Sai Ram. Meherbani, shukriya.
2: Sir, aapne to kal kamal kar diya. Hamare Sai Kulwant Hall mein sab log taali baja ke aapne Bhagwan ke darbar mein jo presentation ki, jo sangeet prastut kiya, uske bare mein jitna bhi kaha jaye wo kam hai. Magar main aapse ek sawal puchna chahti hoon. Aapne shahi darbaron mein gaya hai. Aapne pradhanmantriyon ke samne, rashtrapatiyon ke samne, abhi kuch hi samay pehle Rashtrapati Bhavan mein अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ओबामा जी के सामने भी परफॉर्म किया है.
3: जी, बिल्कुल किया.
2: और कल आपने साई के दरबार में परफॉर्म किया, प्रस्तुत किया आपका संगीत. कैसा रहा आपका अनुभव?
3: बहुत बढ़िया रहा साहब. हमारा जो ये कल का जो प्रोग्राम रहा, हम प्रोग्राम करते रहते हैं, दुनिया भर में करते रहते हैं, सभी कलाकार जितने बैठे हैं ये
2: जी.
3: और हमारे पहले दो राजस्थान में और भारत में, पूरे दुनिया में प्रोग्राम करते रहते हैं. ये उन बुजुर्गों की देन है जो बुजुर्गों ने हमारे लिए जो कला रखी है, वो हमारी पारंपरिक कला, गांव की कला, रेगिस्तान की कला, और कड़ी से कड़ी जैसे जुड़ी हुई, वैसे हमारी परंपरा से वो जुड़ी हुई है. जो बुजुर्गों ने जो रखा हमारे लिए जो संगीत, वही संगीत हमने कल यहां बाबा के दरबार में गाया और बजाया. मगर कोशिश तो हमने की हम गावे बजाए, मगर ये खुद बाबा गाए और खुद ही साई राम बजाया उन्होंने. और प्रोग्राम खूब करते हैं, मंच पे, स्टेज पे करते हैं, थिएटर में करते रहते हैं, पार्क बहुत बड़ा आता है वहां करते रहते हैं, बहुत बड़ा शिखर में भी करते हैं, स्टूडियो में करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं. मगर कल का जो प्रोग्राम हमारा था, इसमें बहुत हमारे को आनंद आया, क्योंकि स्वयं भगवान वहां विराजमान है. तो वहां भगवान बैठे, भगवान के सामने जो प्रोग्राम हमारे को ये मौका मिला, ये अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत खुशी है. और ये बहुत बड़ी जिंदगी में मैं ऐसा एक प्रोग्राम, एक दो चार ऐसा प्रोग्राम हो जाए तो बस बड़ा ही पार होता है. उन्होंने गवाया और वो यहाँ जो आते हैं वो सच्ची भावना से ही आते हैं। यात्री आते हैं तो वो सच्ची भावना से आते हैं, दुख दर्दी आते, कोई बीमार आते तो अपनी सच्ची भावना से आते हैं। हम यहाँ कलाकार बन करके आए हैं मगर हैं सेवाधारी बाबा के। तो हमने यहाँ आकर के तय दिल से ये दुआ मांगी, बाबा तुम बेड़ा पार करना और तुम्हारी ये बारगाह में और तुम्हारे यहाँ ये प्रांगण में हर जगह, ये दुनिया पूरी बाबा की है, साई राम की है, साई राम कहते हैं। मगर हमारे को उन्होंने एक सच्चाई और भी उन्होंने प्रकट की कि भाई आपको ये चीजें गानी है और ये बजाना है, मैं स्वयं आपके सामने हूं मगर आप मुझे देखते नहीं हो, इसलिए उन्होंने हमारे को पहले कह दिया था। इसलिए उनकी सच्चाई से हमने कुछ जो भी किया वो हमारे राजस्थान की कला, बुजुर्गों की कला, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब गाए बजाए जितने, वो उनकी ही मेहरबानी। बहुत अच्छा लगा हमारे को।
2: अगर आपकी इजाजत तो मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में अंग्रेजी में अनुवाद कर लूं। Dear listeners, just for the benefit of those of you who do not know Hindi, I will briefly give you a gist of what this honorable gentleman Sri Anwar Khan ji told us. He said that this music of the desert from Rajasthan has been handed down to them from generations, and this is their true wealth. This is their heritage. And although he has performed in many royal settings for presidents and prime ministers, including President Obama, who was recently on a visit to India, and he performed there in the presidential palace, even for him and the Queen of Spain and many others, his performance yesterday in the Sai Kulwant Hall was special, was unique, because he said that this performance he performed on the holy land of Prashanthi Nilayam, where God himself was present to enjoy, and he attributes the success of that performance to God being his voice, God being the music. And he said that if in a lifetime one can have 3 to 4 such performances, that's everything accomplished. Life's goal would have been accomplished. And it was only because of God's grace and will that they were able to come here and perform in his divine presence. So, Anwar Khan ji, आप हमें आपका जो ट्रूप है इसमें 9 लोग हैं, आप लोग इनके बारे में कुछ बताइए, थोड़ी इंट्रोडक्शन कर दीजिए।
3: जी जी, आप है लूणा खान, नाम लूणा खान मांगणियार, और हमारा लोक वाद्य पुराना वाद्य जो है परंपरा से जो जुड़ा हुआ, जब हमारी जाति जो स्टार्ट हुई थी मांगणियार, उसी वक्त हमारा ये वाद्य हमारे साथ मालिक ने दिया था कि आपको ये वाद्य बजाना, इसका नाम कमायचा। इसको कम से कम 1000 साल हो गए, 1000 साल पुराना है। उस वक्त ये मिलता था, बनाने वाले थे, अब वो कम पड़ गए हैं जो बनाने वाले।

0: और इनकी उम्र क्या होगी सर की?
1: 80 के करीब है।
0: ओके, दैट्स अ रेयर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कमाचिया। दिस इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ दिस म्यूजिशियन इज ऑल्सो अबाउट 1000 ईयर ओल्ड बिकॉज देर आर नो आर्टिजांस लेफ्ट टू इवन क्राफ्ट or produce this instrument. So it's a very rare thing. And the person playing it is 80 years old and his name is Luna Khan. Sri Luna Khan ji is the 80-year-old musician who has this knowledge. Luna Khan ji, aur kisi ko sikhaya hai aage?
2: Kamacha humare pita ji ke paas maine sikha tha. Ye kamacha bajana.
0: Aapke bachchon ko sikhaya
2: hai? Pita ji bajata tha.
0: Aage kis ko sikhaya hai?
2: Mere ladka hai, wo sikh raha hai, pota sikh raha hai. और भी सिखाऊंगा।
0: I see. So this knowledge he acquired from his father and now he's passing it on to his son and grandson so that it lives on. धन्यवाद। बाकियों से हमारा
1: इनका नाम हुसैन खान लंगा। हम मंगनियार है, ये लंगा कास्ट,
0: लंगा कास्ट के
1: दो कास्ट है हमारी पानपरी जो राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर में। तो ये हुसैन खान लंगा ये सिंधी सारंगी बजायेंगे। इनका वाद्य लंगों का वाद्य सिंधी सारंगी और मंगनियारों का वाद्य कम है।
0: अच्छा,
1: तो ये हुसैन खान सारंगी बजाते, इनकी परंपरा से बजाते आ रहे हैं। बाप भी बजा रहे हैं, दादा बजाते थे, आप बजा रहे हैं, इनका बच्चा भी बजा रहे हैं।
0: विल नाउ हियर श्री हुसैन खान लंगार प्ले द सारंगी फॉर अस, विच इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट यूनिक टू द लंगा कम्युनिटी।

0: धन्यवाद। बाकियों से परिचय कराइए।
1: जमाल खान मांगणियार।
0: साईराम सर,
1: आप लोने खान का लड़का है, आप गाते हैं और हारमोनियम बजाते हैं।
0: कल हमने आपको गाते हुए देखा और सुना भी, बहुत
1: जी,
0: अच्छा
1: जी,
0: लगा।
1: बिल्कुल। आप भूंगर खान मांगणियार मेरा छोटा भाई है और गाते हैं और ढोलक भी बजाते हैं।
0: बजा के दिखा दीजिए थोड़ा सा।

0: वाह उस्ताद, धन्यवाद, बहुत अच्छा था।
1: आपका नाम बाबू खान?
0: नमस्कार साईं राम जी।
1: ये मेरा बड़े बाप का लड़का है, भाई है।
0: ये भी गाते
1: हैं? गाते हैं और अच्छे गाते हैं, और आप हारमोनियम बजाते हैं और गाते हैं।
0: अच्छा,
1: पुराने की जो हमारे बुजुर्गों के पुराने गाना और भजन।
0: अच्छा,
1: आप रोशन खान?
0: साईं राम रोशन खान जी,
1: ये मेरा लड़का है
0: जी, बहुत अच्छा हारमोनियम
1: का, साईं राम का,
0: साईं राम का
1: तो ये हारमोनियम बजाता और गाता है।
0: मैंने देखा आपकी उंगलियां कैसे नाचती हैं हारमोनियम पे, बहुत अच्छा बजाते हैं आप सब। कुछ बजा के सुना दीजिए थोड़ी सा।

0: धन्यवाद।
1: खेता खान,
0: सायराम खेता,
2: खेता खान मणिया लूणे खां का लड़का है।
0: अच्छा, आप दोनों
2: भाई हैं।
0: अच्छा,
2: लूणे खां का लड़का आप गाता है, हारमोनियम बजाता है, खड़ताल बजाता है।
0: अरे वाह।
2: और आप रईस खान,
0: सायराम रईस खान,
2: रईस खान खड़ताल बजाता है और गाता है।
0: कल मैंने देखा जब आप खड़ताल बजा रहे थे, आप बीच में खड़े होते थे तो लोग खूब तालियां भरपूर बजाते थे, बहुत ही अच्छा लगा।
2: ढोलक बजाता है, गाता भी है, खड़ताल बजाता है।

0: और सबसे पीछे जो बैठे हुए हैं व्हाइट एंड व्हाइट में हमारे साई ऑर्गेनाइजेशन के भाई, उनके बारे में बताइए।
1: जी श्री पीताम्बर जी खत्री,
0: साई राम सर,
1: वो बाड़मेर से हैं। हाँ। और हमारे को पहले, हम बाड़मेर एक सिटी में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, और कई पीढ़ियां हमारे साथ में रही हैं जजमानी प्रथा से। फिर अब ये हम मिलते रहते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं, करते रहते हैं। आप बहुत बड़े सेवादारी, यहाँ सेवा खूब काफी सालों से आप सेवा यहाँ दे रहे हैं, यहाँ काफी सालों से यहाँ
0: पुटपट के आ रहे हैं, बाबा के भक्त हैं।
1: मगर ये जो बाप जी के साथ यहाँ आना, वो मेल जुल पीतामृत जी से हो गया। इन्होंने कहा भी एक ऐसा वहां धाम है और एक आश्रम है, वहां आपको चलना है, सब चलेंगे, उसका हुक्म होगा उस वक्त। बस वो यहाँ आकर उन्होंने कह दिया और बात हो गई, हुक्म हो गया और आ गए और बाबा की आज सेवा में बैठे हैं।
0: और हम सब आपके बहुत आभारी हैं कि आप इतने अच्छे संगीतकारों को मंदिर में लेकर आए।
2: सब भगवान उनकी इच्छा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता,
0: वो तो सच है कि भगवान की इच्छा के बगैर यहाँ कोई नहीं
2: आ सकता, सब माध्यम है।
0: आपने अपने जो कल भजन गाए और जो आपने कॉन्सर्ट प्रस्तुत किया, जो मुसुकी प्रस्तुत की, कैसे आपने एक एक भजन चुना? पहले आपने इतनी अच्छी गणेश वंदना गाई
1: जी,
0: तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहा? आपने कैसे निर्णय लिया हम क्या गाएंगे, कैसे गाएंगे, कौन सा गाना पहले, कौन सा लास्ट? क्योंकि आखिर का तो ऐसा जबरदस्त दो गाने थे, वो एक तो छाप तिलक और पधारो मारे देश, तो कैसे आपने इतना अच्छा बिल्डअप किया प्रोग्राम?
1: ये तो कल जो था प्रोग्राम था, वो हमने परसों बैठ करके,
0: एक ही दिन पहले,
1: बस एक दिन पहले, बस वो थोड़ा
0: आप
1: सा
0: लोग मंजे हुए आर्टिस्ट हो, आपके लिए इतना आसान
1: बताया था। और ये परसों ही हमने तय किया था, बस पहले नहीं तय था हमारा, क्या गाएंगे क्या बजाएंगे कोई पता नहीं, किसी का क्या पता है।
0: हाँ।
1: मगर हमारा काम जो है वहाँ गांव में जो गाते बजाते हैं, हमारे लोक देवता वहाँ है, तो रामदेव जी है, रानी भटियाणी है, ये जितने भी जगतवा का मंदिर है, जितने मंदिर है वहां जहां हम गाते हैं बजाते हैं, दरगाहों पे गाते हैं
0: जी।
1: तो ये मीरा जी के भजन जो वहां मीरा के मंदिर में हम जाते हैं, गाते हैं बजाते हैं, हमारे को पता ऑलरेडी पहले से है। और वो बुजुर्गों की मेहरबानी है, उन्होंने ये चीजें हमारे लिए छोड़ी है। मगर ये आज साईं राम के यहाँ क्या गाना है और वो क्या गाना है, ये तो वही देते जहां जाते वो ताकत अपने आप देते, आपको ये करना और ये गाना है। अब हम हैं, मैं अनवर खान हूँ, ये लूने खान है, रोशन खान, खेता खान, जमाल खान, बाबू खान, रईस खान, बोंगर खान,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: हुसैन खान, सब खान है,
0: तो आप लोग सब मुसलमान हैं।
1: मगर हमारी जो जजमानी प्रथा है वो है हिंदू राजपूत।
0: अच्छा।
1: उनके अब जो खत्री है, इनके घरों में गाते बजाते हैं मांगलिक अवसर पर।
0: अच्छा।
1: मांगलिक अवसर होता है उन पर हम गाते, जन्म से गाना लेकर के शादी तक।
0: Dear listeners, I'd like to translate the gist of what he just said, which is so priceless in my opinion. He said that they selected the songs just one day before of what to present in the divine presence of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. And he said that all of them, their last name is Khan, and obviously by religion and faith they are Muslims. Yet in their own town of Jaisalmer or Banmer or wherever they go, they sing in various temples, in various dargahs, in Hindu places of worship, Muslim places of worship, Sufi places of worship. And this is a gift of secular tolerance that they have received from their ancestors, because the patrons of their arts were Rajput kings. And because of that, they learned to sing for all audiences, realizing the unity behind different forms of expression. And I thought that's so priceless. If more Indians and more people around the world thought along those lines, we would have fewer wars and conflicts. And music is so binding. So all these nine gentlemen who are here with us are Muslims who are true to their faith, they're devout, they're observant, and yet they sing with such joy name of God pertaining to any faith. For example, they sing Meera bhajans and they sing Krishna bhajans. Aapko आप लोग, क्योंकि सब आपका धर्म, आपका मजहब इस्लाम है और आप लोग अल्लाह की पूजा करते हैं और आप लोग ये भजन गाते हैं जिनमें हिंदू भगवानों के नाम आते हैं, आपको इसमें कोई कठिनाई तो नहीं होती?
1: कोई कठिनाई नहीं, हमारे जैसे जो गांव में जो सद्भाव जो है ना, हमारे गांव में हमारा रहन सहन जो है बस इसी रीति से जुड़े, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं
0: और ईद भी मनाते हैं,
1: ईद भी मनाते हैं, निकाह रोजा सुन्नत वगैरह हम ज़कात वगैरह सब करते हैं, हज करते हैं।
0: सारे हिंदुस्तान को आपसे सीखना चाहिए
1: जी, बिल्कुल, उसमें ये है कि हमारा कोई भेदभाव नहीं, उसमें हम तो गा रहे हैं एक ही मालिक। अब कल हमने जो गाया है जो ख्वाजा
0: जी ख्वाजा
1: साहब का गाया, हमने अमीर खुसरो का गाया, हमने गजानंद जी का गाया, शिव शंकर जी का गाया, कृष्ण भगवान को गाया हमने, और केसरिया बालम। केसरिया बालम तो है, गाना वगैरह सब मनुष्य के लिए बनाया हुआ है केसरिया बालम, मगर है उनका
0: असली बालम तो भगवान है,
1: भगवान है
0: ऊपर वाला है,
1: उसका हम गा रहे हैं
0: जी।
1: मनुष्य को तो राजी करना ही है, उनके लिए करना है, क्योंकि अब धरती पे बैठे हैं तो मनुष्य है तो उसको राजी करना है। फिर उसके बाद में जो है उनसे पहले है वो तो भगवान है, उसके लिए तो कहीं भी दरगाह में गा सकते हैं, मंदिर में गा सकते हैं, गुरुद्वार में गा सकते हैं, चर्च में गा सकते हैं, कहीं भी गा सकते हैं। तो संगीत तो कहीं भी, संगीत की कोई जाति नहीं होती है।
0: बिल्कुल आपने सही बोला, एकदम सही फरमाया, और आप जो बोल रहे हैं यही भाषा है जो सत्य साई बाबा ने सिखाई है
1: जी, जी,
0: कि रास्ते अनेक हैं मगर पहुंचना सबने एक ही जगह है, मंजिल एक है, उधर पहुंचने के रास्ते। भगवान को आप किसी भी नाम से बुलाएं, आपकी प्रार्थना आपकी पूजा पहुंचती तो एक ही जगह है। मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट कर देती हूँ। व्हाट द ऑनरेबल श्री अनवर खान जी जस्ट सेड इज सो प्राइसलेस। वंस अगेन ही सेड दैट दे फाइंड एब्सोल्यूटली नो डिफिकल्टी, दे आर डिवाउट एंड ऑब्जर्वेंट मुस्लिम्स हु फॉलो ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इस्लामिक रिलीजन सच एज फास्टिंग, रमदान, सेलिब्रेटिंग, ऑब्जर्विंग ईद एंड ऑल द डूज एंड डोंट्स ऑफ द फेथ, एंड एट द सेम टाइम दे आर इक्वली at ease singing the glory of the one and only God through the medium of a Hindu song. They have performed in churches and gurdwaras, the Sikh places of worship or Hindu temples, and of course the dargahs, and in their village there is absolute tolerance and acceptance of each other's culture, so much so that all of them, although being devout Muslims, also participate in Diwali celebrations and holy celebrations which are festivals of the Hindus. So ये तो इतनी खुशी की बात है। अब आपने कल जो गाने गाए उसका हमें एक एक मुखड़ा थोड़ा सा सुना दीजिए, उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आप एक गाना गाएंगे उसको थोड़ा सा आप मुखड़ा सुनाएंगे, हम फिर कल के कॉन्सर्ट का पूरा म्यूजिक के साथ जो आपने कुलवंत हॉल में गाया था वो उसके साथ अटैच कर देंगे। थोड़ा सा सुनाइए गणेश वंदना, थोड़ी सी सुनाइए जो
1: जी, जी जी। नाम है उसका कुलवंत हॉल है,
0: साई कुलवंत हॉल,
1: साई कुलवंत हॉल, क्या नाम है, वाह वाह।

0: एक और निवेदन है आपसे, आपने एक बहुत ही अच्छा भजन सदगुरु का गाया था, वारी जाऊं रे सदगुरु आंगन आए, वो थोड़ा सा सुना दीजिए, फिर मैं उसका रिकॉर्डिंग पूरी लगा देंगे इसके साथ।
1: ये मीरा बाई का भजन है
0: जी, मीरा जी बाई का। हाँ,
1: तो वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारा हमारी राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी भाषा में, मोरा सतगुरु आंगन आया, मेरा सतगुरु आंगन आया वारी जाऊं, सतगुरु आंगन आया गंगा गोमती नाया, मोरा धन धन भाग सवाया मैं वारी जाऊं रे।
0: थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। दिस इज अ भजन बाय मीरा बाई द ग्रेट कृष्णा डेवोटी एंड इट वेलकम्स द अराइवल और हेरल्ड्स द अराइवल ऑफ द सदगुरु द सुप्रीम टीचर एंड द ब्लेसिंग्स दैट अराइवल ऑफ द सदगुरु ब्रिंग्स टू मीरा। इट्स लाइक सेल्फ प्यूरिफिकेशन बाय टेकिंग अ डिप इन टू द होली रिवर्स ऑफ गंगा एंड गोमती एंड and what a great fortune it is, what great luck it is that his divine feet are treading upon my home or my place because the Sadhguru has arrived. So let's hear it from Sri Anwar Khan ji and his party.

0: जय साईं राम।
1: वाह, मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ बोलने को। आप लोग, लगता है माता सरस्वती आप सबके कंठों में बैठी है, आपके हाथों में बैठी है, और आपके आपके जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है इनको भी वही बजा रही है और आपके गले में बैठ के आपको प्रेरित कर रही है। कितना अच्छा गाते हैं आप सब।
0: आपके पास शब्द सब है, आप बस, हम देख रहे हैं आपकी आत्मा को, बस इससे ज्यादा शब्द क्या हो हमारे लिए। आप हमारे को जो कह रहे हैं, जो आप अपने आपकी आंखों में दिख रहा है हमारे को, अब ये आंखों से आंसू जो निकलता है ये हृदय से ही निकलता है
1: जी।
0: बात को कहनी है तो दिल से बात कही जाती है, मालिक का नाम दिल से लिया जाता है। यहां से आपके आंसू निकल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो हमारे लिए।
1: और एक आपने बहुत अच्छी बात पहले बोली कि जो म्यूजिक है, जो संगीत है, ये सबको जोड़ता है।
0: जी जी।
1: और इस ये एक माध्यम है जिसमें ये क्षमता है कि दिलों को जोड़े और समुदायों को जोड़े।
0: जी।
1: तो आप लोग बस ऐसे ही गाते रहिए, और भारत जैसे देश में जहां पे लोग धर्म और मजहब के नाम पे सिर्फ लड़ते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, एटलीस्ट जोड़ें अपने दिलों को।
0: जी जी बिल्कुल।
1: अभी वो जो आपने लास्ट में कल गाया था बहुत अच्छा, पधारो मारे देश, वो थोड़ा सा सुनाइए और उसका मीनिंग बताइए। इट इज एन इन्विटेशन।
0: तो ये उस गाने से पहले
1: जी
0: थोड़ा हम
1: जरूर बताइए
0: कहेंगे।
1: हाँ।
0: जो आपने फरमाया कि हमारे पास शब्द नहीं, जो आपको क्या कहें
1: जी,
0: ये साईं राम की मेहरबानी है, देवी देवताओं की मेहरबानी है, मगर विशेष तौर से जो वाह वाह मिलना चाहिए वो हमारे बुजुर्गों को
1: जी, बिल्कुल
0: जो
1: सही
0: धने है वो उनको है, उन्होंने ये कला रखी हमारे लिए, धने हो उनको हो, उन्होंने रखा कई पीढ़ियों तक संभाल करके। अब जो ये संगीत का संदेश हम दे रहे हैं, जो बीमार है उसको ठीक कर देते हैं संगीत, और ठीक है उसको बीमार कर देते हैं। हमारा बस यही है कहना कि जो संगीत से हमारे को वाह वाह मिल रही है, बुजुर्गों को मिल रही है, हमारे संगीत को वाह वाह मिल रही है। कलाकार कहते हैं कि उस कलाकार ने ये राग बनाया, उस कलाकार ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, और ये इसने कलाकार कला को खूब बढ़ाई, मगर ये थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा है, अटपटांग भी लग रहा है। कला तो पहले थी, कला के जरिए कलाकार आगे बढ़ता है। ये कोई कलाकार नहीं है जो उन्होंने ये ठीक अपना वाद्य बनाया होगा, उन्होंने वाद्य बजाया होगा, उन्होंने रागें बनाई होगी, मगर रागे तो थी पहले, संगीत तो पहले था। तो इसमें कोई कलाकार की ये जरूरी नहीं कि उन्होंने ये बढ़ाया है, मगर हमारा ये संदेश है कि जरूर कलाकार में होता है। अब जो आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे हैं वो गाते रहे, बजाते रहे, अपना पढ़ते रहे, और अपना आगे जो कार्य है संगीत को छोड़े ना, संगीत को ही ले करके बैठे। हमारा जो हमारी लाइफ वो संगीत ही है, हमारा खाना पीना पहनना उड़ना चलना फिरना सब संगीत है। कहते हैं हमारे वो बुजुर्ग कहते थे माई लाइफ म्यूजिक, तो हमारी जो लाइफ वो म्यूजिक पे ही है। ये संगीत हमारा जिंदा रहेगा, संगीत जिंदा है तो कलाकार भी जिंदा है।
1: बिल्कुल।
0: संगीत जिंदा नहीं है तो कलाकार जिंदा नहीं है। तो हमारा संदेश हमेशा यही है साईं बाबा की मेहरबानी से, बस ये संगीत ही है, संगीत में फैलाव है, संगीत आगे बढ़े, और संगीत से ही काम वाह वाह मिलती है दुनिया में, वो सब आशीर्वाद मिलता है, सब वो संगीत के वजह से मिलता है। अब आपके सामने जो गा रहे हैं हम,
1: मैं उससे पहले जो आप गाए उससे पहले थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर दूं, वेरी लूजली ट्रांसलेटेड, एंड इफ आई वर टू समराइज व्हाट श्री अनवर खान जी जस्ट टोल्ड अस इज दैट ऑल द क्रेडिट फॉर दिस स्पेल बाइंडिंग मैजिकल म्यूजिक दैट एवरीबडी प्रेजेज देम फॉर गोज टू ऑफकोर्स साई बाबा जी एंड द वेरियस देवीज एंड देवताज एंड स्पेशली टू देयर एनसेस्टर्स हु हैव केप्ट दिस हेरिटेज एंड दिस ट्रेडिशन अलाइव एंड पास्ड इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड ही सेज यू नो नाउडेज आर्टिस्ट लाइक टू टेक क्रेडिट दैट यू नो सो एंड सो क्रिएटेड दिस राग एंड सो एंड सो स्टार्टेड दिस इंस्ट्रूमेंट बट द आर्ट वॉज ऑलरेडी देयर, मे बी समबडी डिस्कवर्ड इट और रिवाइव्ड इट, बट द आर्ट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज एंड इट इज a credit to their ancestors and their foresight that they chose to conserve and preserve this art form and pass it on to the other generations, and he hopes that the same music will continue by them passing it to the future generations. This art form cannot afford to sort of become extinct, it has to survive the test of time and be passed on from generation

0: श्री अनवर खान जी और आपके साथियों को मैं, मेरे पास शब्द नहीं आपको धन्यवाद कहने का, शुक्रिया कहने का। आपका बहुत बहुत करम है कि आप यहां आए और हमारे साथ आपने ये समय बिताया। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूं और हम श्री पीताम्बर दास खत्री जी के भी बहुत आभारी हैं जिनने ये, उनके दिमाग में, जहन में ये ख्याल आया कि आप सबको लेके प्रशांति निलयम आए। और हम भगवान श्री सत्य साई बाबा, जैसा आपने बोला, साई राम को सलाम करते हैं कि आप सब यहां आए और आपका संगीत आपने हमारे साथ बांटा और हमें इतना प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: शुक्रिया। जय साई राम।
0: जय साई राम।
1: ने गाए बजाए और अच्छा, सबने अच्छा किया,
0: बहुत सब आप
1: और आपने
0: सब
1: बहुत बढ़िया यहाँ हमारे लिए अच्छा की खिदमत, बहुत अच्छे रहे, आराम से रहे। और हमारा ये नहीं कि हम कलाकार बन के आए, हम सेवाधारी बन के आए, बहुत अच्छे रहे, आराम से और आते रहेंगे और बाबा की हाजिरी देते रहेंगे। जहां गए वहां बाबा का तो पहले गाएंगे, फिर उसके बाद में।
0: ये तो बहुत खुशी की बात है, आते रहिएगा, ये आपका घर है,
1: बिल्कुल आते रहेंगे।
2: साई राम, यू जस्ट हैड टू ए न्यू एपिसोड ऑफ द सेगमेंट लव टू लव। दिस सेगमेंट इज होस्टेड बाय रेडियो साई चंदू विजय एवरी थर्सडे एट 2 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। टुडेज एपिसोड वॉज फर्स्ट प्लेड लाइव on 17th September 2015.
3: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagawan Sri Satya Sai Baba.
4: Radio Sai Global Harmony now presents a selection of devotional songs.
5: My humble pranams at the most beloved Bhagwan. Swami, Sai Youth Team of Haryana and Chandigarh is presenting Sai Swaranjali, a musical concert in your divine presence in the form of soulful songs. Swami, the members of this group are passed out Balvikas and Sai students. Dear Swami, kindly bless and allow us to present Sai Swaranjali.

मानव सेवा ही माधव सेवा है। प्रिय स्वामी ने अपने जीवन के माध्यम से हम सबको यह अमूल्य संदेश दिया है। उनका संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित रहा। अब हम अपनी इन भौतिक आंखों से अपने प्रिय भगवान के सुंदर दर्शन तो नहीं कर पाते, परंतु उनके प्रेम और उनके संदेश को अपनाकर अपने भीतर उनकी दिव्य छवि के हम दर्शन कर सकते हैं।

मूल रूप में राग देश में है। कुछ अन्य रागों की इसमें छाया दिखाई जा रही है और साथ ही उस राग में जो प्रशांति भजन है उसकी झलक भी यहां पर दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले राग

0: स्वामी, मेरी जिंदगी हमेशा बड़े सपनों से नहीं बनी है, अक्सर ये उन छोटे लम्हों से जुड़ी हुई है जिन्हें महसूस करके अपनाया गया। मेरा जन्म यही पुट्टपर्ती में आपके ही जनरल हॉस्पिटल में हुआ था। मैं एक प्रीटर्म बेबी थी और मेरा वजन सिर्फ 750 ग्राम था और मुझे इंक्यूबेटर में रखा गया। हर दिन मेरे पापा स्वामी के दर्शन के लिए बहुत प्रयास किए पर उन्हें एक भी मौका नहीं मिला। उन बेबस पलों में जब सारे रास्ते बंद दिखे, स्वामी ने स्वयं पापा को दर्शन के लिए बुलाए और कहे, अरे दुन्न पोता इकड़ किरा, कूतुर पुट्टिनंडा, स्वामी चप्पने ले दू। अगले दिन पापा को संदेश मिला कि स्वामी चप्पारु पापकी कृष्णुड़ी अम्मा पेरु पेट्टमनी। तब मेरा नाम यशोदा रखा गया। बहुत जल्द मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। उस दिन से लेकर आज तक स्वामी आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। आपकी कृपा से मुझे श्रीमती ईश्वरम्मा हाई स्कूल में एडमिशन मिला, जहां मैंने हर कदम सिर्फ और सिर्फ आप ही के ओर बढ़ाया। अक्सर मैं सोचती थी मुझे ही क्यों चुना गया, और इस प्रश्न का उत्तर आज मुझे मिला है। ये नाम, ये पहचान कभी मेरी नहीं थी स्वामी। ये एक ऐसा रिश्ता है जो एक माँ और बच्चे के बीच में हो। आपने मुझे ये एहसास दिलाया है कि अगर हम एक कदम आपके ओर बढ़ाते हैं, आप 100 कदम हमारे ओर लेते हैं। धन्यवाद स्वामी, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने के लिए।
1: In His presence, every moment becomes sacred. Every act of service transforms into worship. And every burden surrendered at His lotus feet gently turns into grace. Through every struggle, His compassion uplifted us and His love carried us forward, filling our journey with purpose, strength, and hope. Today, with hearts overflowing in reverence and gratitude, we realize the immeasurable blessing of walking on the same earth that has been sanctified by His holy footsteps. Ententa punyamo ee pudami tallidi.

0: that brings us to the end of the current episode of Radio Sai Bhajan Classroom. If you have any queries or comments, as always, you can write to listener@radiosai.org. The audio engineers for this program are Abhishek and Sunil. The background score was done by another alumnus from Chennai, T.S. Ramakrishnan. With heart full of gratitude, we offer this program at the lotus feet of Bhagwan. You were listening to an episode of our program Radio Sai Bhajan Classroom. This episode was first aired on 3rd March 2016 as part of Thursday Live from Prashanthi Nilayam on Asia Stream of Radio Sai Global Harmony. This program was hosted by Team Radio Sai's Bishu. Thank you and Sai Ram.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: Bhagwan Sri Satya Sai Baba ne sun 1973 ke grishmakalin kakshaon mein Sri Adi Shankaracharya virachit Bhaj Govindam par mahatvapurna pravachan pradan kiye. In pravachanon mein bharatiya adhyatmikta aur vedon ka saar bhara hua hai, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 21 जून 1973 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
3: भूमिका, शंकराचार्य प्रणीत भज गोविंदम से संबद्ध प्रवचन श्रृंखला के इस अंतिम प्रवचन में भगवान बाबा विद्यार्थियों को अनेक जीवनोपयोगी तथ्यों का उपदेश देते हैं। स्वामी कहते हैं कि वर्तमान कर्मों पर ही भविष्य के आधारित होने के कारण हमें सर्वदा सदाचरण और सत्कर्मों में ही रहना चाहिए। जीवन में सद्भक्ति के साथ अनुशासन और कर्तव्य परायणता का होना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी ने स्पष्टतः कहा कि जीवन में धन संपत्ति की अपेक्षा सच्चरित्र ही महत्व रखता है। अतः छात्रों को चारित्रिक विशुद्धता के प्रति सतर्क रहते हुए अनावश्यक आवेगों से सर्वदा दूर रहना चाहिए। इस कच्ची उम्र से ही आदर्शपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक नियमों का अनुसरण करने पर ही बुढ़ापे में वे सहारा बन सकते हैं। इसलिए सदाचरण ही जीवन की नींव होनी चाहिए।
4: तप्पु कानक सर्वमो

सगले उदार, ज्यों पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राहित संत संग बिनास, ज्यों साबन कापर उज्जल होत, नाम जबत सब ब्रह्म पौ खोत, ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चात्रक बूंद की प्यास, ज्यों कुरंक नाद करन समाने, त्यों हर नाम हर जन मनै सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ताय आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैण आलोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए, ब्रह्म पै छूटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब बिस्माद, राम कली महला पंजवा, जी जंत सब पेखी, प्रभ सगल तुम्हारी धारणा, एहो मन हर कै नाम उदाहरणा रहाओ, खिन मैं थाप थापे कुदरत, सब करते के कारणा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बिदारणा, नाम जपत मन निर्मल होवै, सूखे सूख गुदारना, भगत सरण जो आवै प्राणी, तिस इहां उहां ना हारना, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुम ही आगे सारना, तू दाता सबना जिया का, अपन किया पालना, अनक बार कोट जन ऊपर, नानक वन्ये वारना, राम कली महला पंजवा, अष्टपदी एको ओंकार, सतगुर प्रसाद, दर्शन पेटत पाप सब नासै, हर स्यों दे मिलाई, मेरा गुर परमेसर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई, रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना, संत तूर मुखलाई, पतत पुनीत की अखन पीतर, अज्ञाना देर वंजाई, कारण कारण समर्थ स्वामी, नानक ते शरणाई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो, सात शब्द बने आई, जन्म मरण का सहसा चूका, बाहुड़ कतो ना ताई, नाम रसायन एहो मन राता, अमृत पी तृप्ताई, संत संग मिल कीर्तन गाया, निचल वस्या जाई, पूरे गुर पूरी मत दीनी, हर बिन्यान ना पाई, नाम निधान पाया वड भागी, नानक नरक ना जाई, काल सियाणप उकतना मेरी, पूरे गुरु कमाई, जप तप संजम सोच है सोई, आपे करे कराई, पुत्र कलत्र महाबिखिया मैं, गुरसाच लाए तराई, अपने जीतें आप संभाले, आप लिए लड़ लाई, साई धर्म का बेड़ा बांधया, पवजल पार पवाई, बेसुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई, अकाल मूर्त अजूनी संपाओ, काले अंधकार दीपाई, अंतरजामी जियन का दाता, देख तृप त्यागाई, एक अंकार निरंजन निरपाओ, सब जल थल रया समाई, भगत दान भगता को दीना, हर नानक जाचै माई, राम कली महला तीजा, राम कली महला पंजवा, सलोक सिखो शब्द प्यारे ओ, जन मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मंत्र दाता राम प्यारे, हर प्रेम भगत बने आई संतो, सतगुर खेप निबाही संतो, हर नाम लहा दास कौ दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन ना जाई संतो, चरण कमल स्यों लागो ध्याना, साचे दर्श समाई संतो, गुण गावत गावत पय निहाला, हर सिमरत तृप्त आगाई संतो, आत्म राम रविया सब अंतर, कत आवै कत जाई संतो,
ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤੋ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਐ ਪੂਰ ਰਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਸੰਤੋ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸੁੱਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੀ ਘੁੰਮਨ ਕੇਰ ਮਹਾਤ ਬਿਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ਰਹਾਓ ਅੰਤਰ ਸੁਖਾ ਬਾਹਰ ਸੁਖਾ ਹਰ ਜਪ ਮਲਨ ਭਏ ਦੁਸ਼ਟਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤਨੈ ਨਿਵਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਉਧਰੇ ਸੰਤ ਪਰੇ ਹਰ ਸਰਣੀ ਪਚ ਬਿਨਸੇ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਫਲ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਣਾ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੁਮ ਸਮਰਾਥਿਆ ਕਾਥਾ ਗੋਚਰ ਰਵਿਆ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ

लभ लोभ अंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए हे तिवै चल है जिन्ना मार्ग पावहे कर किरपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्यावहे जिसनों कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यो पावे तिवै चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया एक फिरै कनेरे करै गल्ला गली किनै ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए सेज ना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सवाईया कहिंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हरार त्याया करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कुमाए सहसै जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मन तोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए कह नानक गुरप्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाए जियो मैले बाहरो निर्मल बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिन्नी जन्म जुवै हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरै ज्यों बेतालिया कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुवै हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कुमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरनाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रह गुरनाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मा समाले आप छड़ सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानके ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो कण उन्म बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहया सर्बठाई हर नाम नवनिद गृह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो सलोक आस प्यासी मैं फिराओ कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जानो नानक प्रभ मिलनहार बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पलो रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडंबरो असू कतके हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो बिनकंत प्यारे ने सूग सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत ओत दह दिसया लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हार हम तुमते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमण राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने शंत

पीर वाट पटाऊ आवे जाए क्या ले आया क्या पल्ले पाए विण नावे तोटा सब थाए लाह मिले जा दे बुझाए वणज व्यापार वणज व्यापारी विण नावे कैसी पतसारी गुण विचारे ज्ञानी सोए गुण में ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करनी गुर विचार अगम या गोचर कीमत नहीं पाए पाम लिया जा लय मिलाए गुणवंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिली है मीत काम क्रोध काया कौ गल है ज्यों कंचन सोहा गाटल है कस कसवटी सह सोताओ नदर सराफ वनीस चढ़ाओ जगत पशु अंकाल कसाई कर कर तय करनी कर पाई जिन कीती तन कीमत पाई होर क्या कही है किश कहन ना जाई खोजत खोजत।

0: जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए चेता एक तही सुखोए चित वसै राचै हर नाए मुक्त भया पत स्यों कर जाए छीजै देह खुलै एक गंड छे अन देखो जगहंड धूप छाव जे सम कर जाना बंधन काट मुक्त कर आना छाया छूची जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना छीजै जोबन जरुआ सिरकाल काया छीजै पही सिवाल जापै आप प्रभु तिहु लोए जुग जुग दाता अवर ना कोए ज्यो पावै त्यों राखै राख जस जाचौ देवै पत साख जागत जागरहा तुद पावा जा तू मेलै तां तुजै समावा जय जयकार जपो जगदीश गुरमत मिलिए बीसा कीस चख बोलन क्या जग स्यों वाद चूर मरै देखै प्रमाद जन्म मुए नहीं जीवन आसा आए चले पहे आस निरासा चोर चोर चख माटी रल जाए काल न चांपै हर गुण गाए पाई नवन दहर कै नाए आपे देवै सहे सुभाए ज्ञानो बोलै आपे बूझै आपे समझै आपे सूझै गुर का कहया अंक समावै निर्मल सूचे साचो पावै गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साचा खोट गुर कहया साकार कमावो गुर की करनी काहे तावो नानक गुरमत साच समावो।
1: This is Radio Sai Global Harmony coming to you via the World Space Digital Broadcasting Service and bringing you the love and the message of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba.
2: Radio Sai now offers you some devotional Christian

0: Radio Sai now brings you Moments of Oneness, a program of music, chanting and readings from the rich heritage of the world's religions. We hope that you will find the next hour inspiring and informing. Today, we bring you some sublime offerings from the Sikh religion. We open with the Sikh morning prayer, the Chaupai Sahib.
1: Patshahi dasmi kabyo vach benti chaupai, hamri karo hath dai rachha, purn hoye chit ki ichha, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को वास संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हुजोसदा हमारे पच्छा, श्री अस तुजू करिय और अच्छा, राख ले हो मुहे रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमासा, जवन काल योगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छ ने उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सगल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर या स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जाबोध करख करा करतारा, प्रजा तरतब देह अपारा, जब आ करख करत हो कब हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सगल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद की।

अपारा। जब आकरख करत हो कब हूं, तो मैं मिलत देह तरसब हूं। जेते बदना सृठ सब धार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही

अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहो रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर अकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप।

दुष्ट जिते उठवा त्योतपाता सकल मलेश कर और रणकाता जे अस्तोज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निपटने है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्टिया रिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मुहर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह शव सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सर्व ठौर